युगायुतं न विषेण चक्षुषा प्रविशायितं सुयायितं जगत्सर्वं गोविन्दवेण मे आशिष्या पापरोधं विनाशकृतम् अदाशनम्।

गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुसाक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुसाक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम।